0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: Hello, and J Masi. Now you are listening to Good News FM 105.1 MHz Stereo Sound, the voice of the Lord.
1: अब प्रस्तुत हुँदैछ विभिन्न अंग्रेजी वर्जन गीतहरू।

उही चोट वो स्याजा बी यक्कुपट ख्रिस्टेन तेस थगो न्यस न्यनी नुङ परमेश्वर छ्या थजागो ख जुके बी थो तस्कहे बालागो न्यस ख अले बिचायाना लिस बिमागो न्यस गुणी ख्रिस्टेन तेस परमेश्वरिया बुद्धि तस्कहे तधौली सुनान थुइके फैमुखु वैकया लपु छिस थुइके मफु धका जक्क धाइगुले सन्तुष्ट जुए पक्का न परमेश्वरिया बुद्धि छिगु सोया यक्कु त धख धैगु ख छु सत्यता दु पक्का न परमेश्वरिया बुद्धि छिगु सोया यक्कु त धख धैगु ख छु सत्यता दु अचिसा जी त विश्वास दुखी जी गब्ले न छि वो जी थुके फैमुखु छु ख दु अले वो हे झिगु निधि परमेश्वरिया निस्वार्थ मतिना ख थौ जिस ख ल्यातेनुगु ख न वही ख चोट वो पीड़ा जागु संसारे कथियना परमेश्वरिया मतिना केन्यु अदनिया केवे वो आदमिया पाप स्पष्ट याई कि परमेश्वर जी त जीवने थगु हे विकल्प याय त स्वतन्त्र इच्छा ब्यादि गुदु झिस परमेश्वरिया उज कथ वे कया अजु चाहे पुगु आशीर्वाद या अनुभव याए फु अले वे अनुभव ले फै वो जिस परमेश्वरिया योजना या त अस्वीकार याए फु अले झिगु अविश्वास या कारण परिणाम भोगे या फु आदम भिंगु न म भिंगु सीमा नेगु मुखु धका परमेश्वर के आज्ञा माने मया गु निर्णय यागु नि थौ तक विनाशकारी परिणाम प्याहाउल अले थौ तक दया चोन भजन सुई खुगु अध्याय यो न्यागु खुगु पदके दया त गुदु हे परम प्रभु छि न्याले दया चुनिगु माया आकाश थे तध अले छि विश्वास याहे बमख दयागु ख सुप्या सोया न फुलाउने छि धर्मी म ख धैगु ख पहाड थे टिसिला छिगु न्याय समुन्द्र थे तजा छि मनु व पशु या त विचार यानादि थो बालागु पथ ख तर छेज दुज व पिनिया पास या त वगु यक्कु हे थाकुगु दुख व कष्ट झिगु नुग्ले स्याना सुङ्गुली तर छेज दुज वा पिनिपी पास्मी या त वगु दुख हे थाकुगु दुख कष्ट छिगु नुग स्याना चुङ्गु इले आकाश थे तझाम व समुद्र थे गाव म परमेश्वरिया विश्वास योग्य मतिना या त गथियाना व्याख्या यागु परमेश्वर छा इम्ट बसे मयागु ख अले वो समस्या जुई पाखे पने मफुत थो न्यसया लिस मालेगु पल्सा झिगु जीवने हस्तक्षेप याना दुख स्वीकार याए त ग्वाहाली याना दिमा धका परमेश्वर के प्रार्थना यायमा व्यवस्था श्री छगु अध्याय खुगु पदके धाट गुदु बल्ला वो साहसी जु इपिलिसे ग्यामते वा थरथर ख्यामते छा दासा परम प्रभु छिमी परमेश्वर हे छिमी लिसे झाई वैकल छित गुब्ले तोता दि मखु अले त्यागे याना दि मखु जिस जीवने गुलिन पीडा वो दुख फेमाली परमेश्वर झित गुब्ले न तोती मखु वेक न्याब्ले न झी नापन्दु झित सान्तोना वो आशा पिया चुनी रोमी झिन्यगु अध्यायु झिन्यागु पत्के दया त गुदु लसता चोपी नाप छिपे लेता अले खोया चोपी नाप छिपे खो जीवो सुख या इले न परमेश्वर झी नापदु जिस महसुस यानुगु लसता वो सुख छि वोया सोना दि गुदु अले झी दुख जुइबले वेकन झी त घे पुइ अले सान्तोना बी परमेश्वरिया मतिना सत्यता धाइगु वो झी त दुख मधुगु जीवन बी धका वचन ब्यादिगु मखु वेकया मतिना झी त छु वचन ब्यादिगु दु दासा झिस उगु थाकुगु ई या त पार याई बोले वेकन झी नाप दै अले झिस वेक या त विश्वास याई बोले वेकल झी त झिगु छुगु नि पाखे सदा मुक्त याना वेकयु आनन्द व शान्ति जागु जीवन ने लित है भजन सुइगु अध्यायु झिन्छगु पदके धाया त गुदु जिगु दुख या त छि लसताया प्याख्ने हिला दिल जिगु दुख या त निका छि लसता जाका दिल परमेश्वर के गुब्ले बुत ध्या बिचाया मते वेकया गुब्ले
कोमचागु मतिना भलासाया छि फेमाला चुङ्गु थाकुगु इलेन वेकया मतिना छित सात बिकी बिउ थोयो वचन निनादिगुने छित परमेश्वर सुभ्याबीमा जय मसी मेपी छिम्स नकतिन हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादीको हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी।